ਆਇਸ਼ ਪੁਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਕਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ ਗੁਰਪੂਰਾ ਤਤ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭਪਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੋ ਇਹੋ ਕਾਮ ਤਿਆਗ ਜਪ ਹੋ ਹਰਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੋ ਆਪ ਜਪ ਹੋ ਅਬਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵ ਹੋ ਭਗਤ ਭਾਈ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦਨਾਮ ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰੀ ਹੀ ਸੁਆਓ ਨੇਤਰ ਹੋ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਤੋ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਉਪਾਵੈ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰਮਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਭਾਈ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਇਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦਾ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਪੇਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਕਾਰਿ ਹੁਕਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਨ ਚੇਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਸੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਹਾਰਨਾ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ ਜਬ ਏ ਕਹਿ ਹਰਗਮਾ ਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਤ ਠਾਏ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ ਜਬ ਆਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤਰ ਹੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮਾ ਪਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣ ਆਸਨ ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਵਗਤ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਪਰਜਾ ਜਿਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤਹਿ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ ਤਹਿ ਕੌਣ ਕੌਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ਤਹਿ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤਹਿ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਣਾਈ ਤਬ ਕਮਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਹਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤਹਿ ਬੇਦਕ ਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋ ਕੀਨ
जब अपने आप आप उतारा तो सगन अपसगन कहा बिचारा जह अपन ऊच अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचेरा बिसमन बिसम रहे बिसमाद नानक अपनी गत जन हो आप जह शल छेद भेद समाया ऊहा किसा व्याप्त माया पुसकवा पह आदेस तिह गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागा चिंता जह अपने आप आपति यारा तह कौन कथा कौन सुनना हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आप है पहुचा जह आप रचो प्रपंच आकार तेह गुण मह कीनो विस्तार पाप पुन तह पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हूं मैं मोह भरम पै भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा खेल संकोचा तो नानक एकै जह अवगत भक्त तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दोहो पाख का पह तनी उनकी शोभा उनहु बनी अपह कौतक करै अंध चोज अपह रस भोगन निर्जोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेस मार थाह गणत तोला जो बुलाव हो त्यो नानक दास बोला श्लोक जी जंत के ठाकुरा पे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुनना हार आप है एक आप विस्तार जात इस भावै ता श्रेष्ठ उपाय अपना पाना लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंतर सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखा तिस कोई न मारा सो मुआ जिस मन हो बिसारा तिस ताजवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कै सबहाथ अंतर बाहर जन हो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सबू पर होवत कृपाल अपने करतब जान आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रत पाला जीन बहुपात जो जो रचियो सो तिसै त्यात जैस भावै तिस लय मिलाए भक्त करह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निर्वैर अंधन पूजा है गुर के पैर एह लोक सुखिए परलोक सोहेले नानक हर प्रभ आपै मेले साध संग मिलकर हो आनंद गुण गाव हो प्रभ परमानंद राम नाम तत करहो बिचार दुर्लभ देह का करहो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिन सै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाव हो मन इच्छे नानक फल पाव हो हलत पलत दुए ले हो सुवार राम नाम अंतर उर तहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसा तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहो जाए सच वापार करहो वापारी दरगह निबह खेप मारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर ना वह जाए तिस ते दूर कहा को जाए उबरा रख नहार त्याए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राख तिस नाही दुख
नाम जपत मन होवत सूख, चिंता जाय मिटा अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुचन हार। सिर उपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्टा, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठा। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसा सो होत निहाल, ताका निकट नावत काल, अमर पय मरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर बिनास, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास, अष्टपदी संत संग अंतर अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समिगरी एक कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाहे। नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोजी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट ब्याप रहया भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आग्या तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद पुराण सिमरित मह देख, ससियर सूर नखियत्र महेक, बाणी प्रभ की सब को बोला, आप डोल न कबहु डोला, सर्ब कला कर खेला खेला, मोल न पाइया गुण है मोल, सर्ब ज्योत मह जा की ज्योत, धार हो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह हो विसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्मा, संत जना का हृदय सब धर्मा, संत जना सुन है शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिस की एह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माना, करन करावन हार प्रभ जाना, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगरी उत्पत, तिस भावै ता एक अंकार, तिस भावै ता करे विस्थार, तिस भावै ता एक अंकार, अनक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कमन निकट कमन कही है दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखनहारा, सगल समगरी जा का तना, अपन जासो आप ही सुनावन, जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी की नी माया, सब कै मद लिपतो रहा, जो किछ कहना सो आपे कह, आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै ता लए समाए, इस ते होए सो नाही बुरा, उरा कह हो किनै कछ करा, भला करतूत अतनीकी, आपे जानै अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोजी पाए, तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओहो तनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार।
ਸਲੋਕਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰਾ ਚਿੰਦ ਆਸ ਨਿਤ ਤਿਆਗ ਹੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਤੂਹਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੋ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੋ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ ਚਿਤ ਚਿਤ ਵਹੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾ

सफल जीवन सफलता का संग जाका मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाह दवाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पई सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पए गुरदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निबिहि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सो होत निदान सर्वेशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवै अमन जान हर धन खाट चला जन सोए नानक जिसह प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तमे स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबका मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरित शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसा सुनै लाए प्रीत तह जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारा दुलभ देह तत्काल उधारा निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहि समानी।

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तों पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द उतां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गलना समरथ स्वामी सो क्यो मन हो बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साथी साहिबा क्या नाही करते रह ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ

सकल मनोहर पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आप हर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे।

नंबर 17 सहस पण हिजा अर्ध सहस पण तीन कहिजा भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त सुभ मस्त अफजू दोहरा दास चन कर दास पर कीजै कृपा अपार आप हाथ दा राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपई मैना गणेशा प्रथम मनाओ किसन बिसन का बहु नह त्याओ कान सुने पहचान न तिनसो लिवलाकी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहें गहे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सतर हमारे मरिया देख देख जग मैं दो चलै राख आप मुहे और न दलै तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हर प्राम मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बोहर करो कबता बिदराना कृष्ण जथा मत त्रित्र उचारो चूक होए कब ले सुधारो कबे वाच दोहरा जोनेज प्रभ मोसो कहा सो कहे हो जग माहे ज्योते प्रभ को त्याय हैं अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जलते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आए इस प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सबु कहत सुनाए कब वाच दोहरा ठाट पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक बिस्न महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रफसस क्रोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुर्ग बास रग बरकरा सगरी पुरी समेत चौपी जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै बिस्न भगत की ए फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई संबत 1755 हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तवै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल प्री लोह ले सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सतुद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विबाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहमत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तोहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तोहार सगल द्वार को छाड़ के गहो तोहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तोहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोत गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तुसदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही कर तेरा करता तेरा सब किच है जिसते है सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या ना ही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान की ता गुरु विटहो जिसतिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संतो सबत रोपे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबत कर सभागै सबद वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे अनहद सुनो वड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल
ਬਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਅਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰਧਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚੰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੇ ਉੱਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ ਸੁਣਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਹੇ ਭੋਜਲ ਬਿਖ ਮਸਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ ਜਿਨਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਈ ਖਾਹੇ ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਸਭ ਸਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵਤ ਆਹੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰਨਾਓ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਰਨਾ ਗੁਰਨਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵੱਥ ਦੇ ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨਹੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨ ਸਾਧ ਜਨਾਕੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਨ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

है पीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है स्वर्ग है नील है नाद है जे है जाद है अजन्म है वर्ण है पूत है पर्ण है गंज है पंज है चूज है चंज है मीक है रफीक है तंद है बंद है निर्भूज है सूज है अकाल है अजाल है लाह है जाह है अनंत है महंत है लीक है निरस्त्रीक है निरलंभ है संभ है अगम है जम है पूत है छूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गाह है अमान है निदान है नेक है फिर एक है फोजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे पेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ती बिपूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे त्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता दूर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं छेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पेय हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पोजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वंग निर्नाथे नमस्त्वंग प्रमाथे नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग पंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चत्र छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वत्प्रसाद आदरूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान प्रेमान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराजही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न ना जात जा कर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन आद सेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैलो अनुराग नाम काम बेहीन पेख तम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनांत को फिरेक
ਦੇ ਭੇਵਨਾ ਜਨ ਹੀ ਜਿਹ ਬੇਦ ਔਰਕ ਤੇ ਬੂਪ ਰੰਗ ਜਾਤ ਪਾਸੋ ਜਨ ਹੀ ਕਿਹ ਜੇ ਬਾਤਮਾਤਮਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰਿਆ ਚਤੁਰ ਚੱਕ ਮਨ ਹੀ ਪੁਰਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਦਹ ਕੇ ਬੇਖੈ ਜਗ ਜਪ ਹੀ ਜਿਹ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਬੇਸਵ ਰਚਿਓ ਸੰਯਮ ਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੋਗਤ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਸ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁ ਪਰਮ ਰਹਿਤ ਭੂਤ ਲਖ ਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨੁਸਤ ਤੇ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਘਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰ ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨ ਜਨ ਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨਿਤ ਭਗਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾਵ ਹੀ ਬਹੁ ਚਿੱਤ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਭੰਗ ਉਪਮਾਨ ਅੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਦਿਨ ਅਨਾਸ

भूतांग आभा पंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निखाम अत दुत प्रचंड मित गता अखंड आलिसा कर्मा दृश्य धर्मा सर्वा प्रणाडा अनुदंड बाडा चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्रा न मित्रा न परमंग न पित्रा न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रा न मित्रा परे है पवित्रा पृथ्वी स दिश दृश कृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ छज देसा के आ भिज पेशा के आ गंज कर्मा के आ पंज परमा के आ भिज लोका के आ दित सोका के अवधूत बरना के बिकूत करना के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्णा के सर्वा भरना के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव रूप है के आद देव है के आप भेव है के चित्रंग विहीन है के कै दीन है के रोजी रजा कै रही मै रिहा कै के पाक ब्याब है के गैबुल गैब है के आप बोल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना के सर्वत्र पौना के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र प्राणा के सर्वत्र प्राणा के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान्या सदैव प्रधान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पाना के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा के सर्वंग कलीमा के परमंग फीमा के आकल लामा के साहिब कलामा के हुसन उल वजू हैं तमाम उल रुजू हैं मेसुल सलामा सलीखुत मदामा गनी मुल सिकस्ता गरीब उल प्रस्ता बिलंदुल मकाना जमीन उल जमाना तमीज उल तमामा रुजू उल निदाना हरी फुल जी मै रजाय यकीना अनेकुल तरंग हैं भेद हैं भंग हैं जीजुल निवाज हैं गनी मुल खिराज हैं गरीब निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सो जुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है पेदी नूप है समस्तो प्राज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है नूप है ओअंग आद रूप है नाद स्वरूप है नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप हैं छिज हैं छूत हैं के नरकं प्रणास हैं पृथ्वीवल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है नंग है पेख है लेख है अपेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है जय है बै है भूत है तूत है नास है उदास है तंद है बंद है अभगत है विरक्त है नास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है लिख है दिख है लेख है पेख है टाह है गाह है संभ है गंभ है नील है नाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चतुर्छंद प्रसाद
सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री कह मितो मी कह सदैवं प्रभा है जय है जा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है मेसुल अरवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेसुल अलेख है हमेसुल अपेख है जमीनुल जमा है मीकुल इमा है करीमुल कुमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के मितो विपूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के मितो अपंग है मद भार छंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गन मदाम अर बरा गंज हर नर प्रपंज अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनाथ मुन मन प्रकाश गुण गन प्रणाम जल थल मदाम अन छे जंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अखंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास्त्र त्रास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल कर कर प्रणाम तिथ चरण नाम अन छे जगात आज जना बात अन झंझगात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठटा पारा डीठ धर्म अत डीठ कर मान ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद प्रसाद करुणाला है हर काला है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबा

हैं, करुणाला हैं, निरपनायक हैं, सर्वपायक हैं, भव भंजन हैं, रगंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवास हैं, जस पेजास हैं, पोजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके पंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अछरी छंद अजय अल अभ अभ पू अजू अनास अकाश गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख नम काम गाह टाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पोज अंग प्रयात छंद। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामें बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेपूते सदा सचिदानंद सतरं प्रणासी क्रीमुलक निंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजाय बिगनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सुयम भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दोकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं बेपूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सुयम भव सुभं सर्वदा।

साध समूह परसन फिरा जग सत्र स्वभाव लोक जपाएंगे मानवेंद्र गजेंद्र नराध पजौन तर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बराएंगे ब्रह्म हे सर बेसन सची पत अंत फसे जम्फास पराएंगे जे नर श्री पत के परासा हैं पाग ते नर फिर न देह तराएंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नाथ फिरो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै सही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिरा काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पिछाह को शीश निभायो को बुतान को पूज तह पास को मृतान को पूजन तहयो पूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूज तह पास को मेरे तान को पूजन तहयो पूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबैत मुकाव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करी सब बैरन कवाज संगरी है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे बरी है मरण काल का त्रास निवरी है जो सदा हमारे पछा श्री अस्तुजू करी है हो रक्षा राख ले हो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरहा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बेसन प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कन को साव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जा बुद्ध करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जबा करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत निरालमा जा।

पाहनान मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नहपहब। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज सेत जकीनी उत्पज खान बाहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आजुगा स्वरूप संयम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दले हो बारी। सर्ब ठौर मोह हो साई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अनको छै करता। श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांचत फल पावै सोई दुख नंत सह व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जोई आहे सुरस नाम पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता वई। दुख दर्द पौ निकट ना तिन नरके रहै हो जो या। कि एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस पुनतीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनि सह पहुंगुर प्रसाद आसम हला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टूडस राज की तुहनी श्लोक महला पहला।

उड़ उड़रावा झाटा पै वेखे लोग हसै घर जाए रोटियां कारण पूरे तले आपशन धरती नाल गावन गोपी गावन कान गावन सीता राजा राम पूर्ण कार सतनाम जाका किया सगल जहान सेव सेवा करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ।

अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे त्यालख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सती अमर संतोख बजा देना कै विचार दे दे मंगे सह

जोग जोग फिर बटाई है ज्ञानी बुझता है। साजगुरा संतोख का धर्म ग्रथवा उतरे तेरा जत का जोर ग्रथवा। दुआ पर तपै का सत ग्रथवा।

0: अब तक थोड़ी बात छोड़ दे, ठीक है ठीक है, बस बस।
1: वाहेगुरु जी, गौड़ी सुखमणि महा

नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमरो सिमरो सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो सिमरो जास विश्वंपर एका नाम जपत गणत अनेका वेद प्राण सिमरत सुदाक्यर कीने राम नाम इके आक्यर किन का एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गणी न आवै कांखी एक दृष्टहारु नानक उन संग मोहे उधारु सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसाई प्रभु कै सिमरन दुख जम नसाई प्रभु कै सिमरन काल पर हराई प्रभु कै सिमरन दुश्मन तराई प्रभु सिमरत कच बिघन लागै प्रभु कै सिमरन अंधन जागै प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु कै सिमरन साधक संग शरमण दान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुद्ध प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी प्रभु कै सिमरन होय सुफला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताकै लागु पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु का सिमरन उदरे मूचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझाए प्रभु का सिमरन सब के सुझाए प्रभु का सिमरन हिंजम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मुल जाए अमृत ना वृद माहि समाए प्रभु जी बसा साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से धर्मवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन प्रवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमहताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनासी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै वाला प्रभु को सिमरह से परोपकारी प्रभु को सिमरह तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तन निर्मल रिता प्रभु को सिमरह तन अंध कनेरे प्रभु को सिमरह बसे हरनेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन अनहद प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बगासन प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभु सिमरन कांतन पारु सिमरह से जन जन को प्रमया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद पाए हर सिमरन पये सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच हुकन जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगले आकार आओ हर सिमरन मह आप निरंकार आओ कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजनाओ घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानके प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिताओ सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जहा महा भयान दूत जम दलाए तह केवल नाम संग तेरा चला जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहि उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तराए हर को नाम कोट पाप पर हराए गुरमुख नाम जपो मन मेरी नानक पावो सुख कनेरे सागल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जप्त हो सुखिया लाख करोड़ी बंधन पराए हर का नाम जप्त निस्तराए अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जप्त अगावै जेह मार्ग इह जात के लाओ तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूट नहीं कोड लग बाही नाम जप तह पार पराही अनक बेगन जह आए सिंगार
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ ਹੋ, ਹੋ ਮਹਿਲਾ ਮਲਕ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਹ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਕਾਇਨ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗਤੋਸਾ, ਜਹਿ ਪੈਂਡਾਇ ਮਾਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜੀਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਜਾਣੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੁਹ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ, ਜਹਾਂ ਮਾਹੋਂ ਭਯਨ ਤਪਤ ਬੋ ਘਾਵੋ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਵੋ, ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰ ਖਾਇ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾਇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਦਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ

जीते बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेव अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूस कन्हैरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ती ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र धारी तुम ते हो सुआग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक।

का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो फलाओ, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फलाओ, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधारो, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रभारु, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध आगत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को।

ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञान ज्ञानी का कथन जाया दे आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञान गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर...

ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी अलंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सरोकत।

का साजा कभू अब कीर्त महया वै कभू भला भला कहा वै ज्यों प्रभु राख्या ते भीरा है गुरप्रसाद नानक सच कह कबू होय पंडित करे मुख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख्यान कबू कीट हस पतंग हो जिया अनक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जूत भावै सोई होए नानक दूजा अवन कोए कबू साध संगत इह पावै उस स्थान ते बिहोर न आवै अंतर होय ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनास मन तन नाम रते इक रंग सदा बसै पर ब्रह्म कै संग ज्यों जल मह जलया इक टाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गया गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबानो सरो सुखी बस

कछ होए तब इसको सुकना ही कोए, जब यह जाना मैं किस फिरता तब लव गर्व जोन मह फिरता। जब तारै को बैरी मीतो तब लग निहचल नाहीं चीत, जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटाए गुरप्रसाद नानक हो छूटाए। सहस खटे लख कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनक भोग विखे अंकी करै नह तृप्तावै खाप खा मरै।

संत का दुखी भूखा नहीं रह जाए जो पावक इधर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटा अकेला जो बुआड़ तिल खेत माह दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी।

चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मानिया करन करा मन तिन मूल पछानिया जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताक भिन्न न कह न जाई बूजै बूजन हार विवेक नारायण मिले नानकेक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक

का मन माना है, सो सेवक परमेश्वर की गत जाना है। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्ब निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ भरम। सहस सियानप लया न जाई है, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करना

हाथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार अष्टपदी संत जना मिल कर हो बीचार एक सिमर नाम आधार अवरो पाव सब मीत बिसार हो चरण कमल रिद महर धार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ एहो तान संच होव हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख हो मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहि जैस धन कौ चार कुंट उठ ताव है सो धन हर सेवा ते पाव है जैस सुख कौ नित बछ है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जैस सोभा कौ कर भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटा हराव खुद लाए सर्ब निदान मै है हर नाम निदान जप नानक दरग है परवान मन पर बुद्ध हो हर कै नाए दह दिस ताव त्या बैठाए ता कौ बिघन न लागै कोए जा कर हृदय बसै हर सोए काल ताती ठंडा हरनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बस।

अनेक पावन छूटन हारे सिमरित शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल उस तेरा तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सोत मीत कुटांबार बनता इनके कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया बेसथार इनते कहो कमन छुटकार असहस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना नाम बेसार नानक पछताना गुर की मत।

जाच ज्ञान जाच प्रभदान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मग तुहूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यो लाग प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत एकोट एको आधार नानक मग नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हरस पाव बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साधक संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेव इनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इस पुनी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग जूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरा जे काल न पाना सो क्यों बिसरा जे किया जाना सो क्यों बिसरा जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया सो क्यों बिसरा जे अगन महराख गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरा जे व्यक्ति काढ़ा जन्म जन्म का टूटा गांडा गुरपूरा तत एह बुझाया प्रभापना नानक जन तिहाया साजन संत कर हो एहो काम त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरह नाम जपाव हो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी शार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए ब

हम निर्गुण यार नीच अजान नानक कुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम खर के गुण गाए अनकराज भोग बढ़िया।

तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चेहन ना जापत, तब हरख सोग कहो किस व्यापत। जब अपने आप आप पार ब्रह्मा, तब मोह कहा किस होवत परमा। अपन खेल आप वर्तीजा, नानक करना हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब कह हरगमा पार, तब नरक स्वर्ग कहो।

सना तह जन्म मरण कहो कहा बिना सना जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभेका तब चितर गुपत किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कह हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कमन तृप्तावै करन करावन करना हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्ब कला पह प्रवीण तह वेदक देव कहा को चीन जब अपने आप उरतारा तो सगन अप सगन कहा बिचारा जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हुआ प जह छल छेद भेद समाया ऊहा कसै व्यापक माया आपस कौ आप आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन चिंत किस लागा चिंता जह अपने आप पति यारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आप है पहुचा जह आप रचियो प्रपंच कार तेहो गुण मह कीनो बिस्थार पाप पुन्न तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दुहु पाख का पह तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौतक करा आनंद चोज आपह रस भोगन निर्जोग जिस भावै तस आपन नाय लावै जिस भावै तस खेल खिलावै।

सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप, प्रतपाला जियन बहुपात, जो जो रचियो सो तिसै त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया, जन लागा हरे कनाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पए निर्वैर, अंधन पूजै गुर के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभा पह मेले, साध संग मिल कर हो नंद, गुण गाव हो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करहो विचार, दुर्लभ देह का करहो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ,

हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर वरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसा तिस साच प्रीखिया।

पदी संत संगांतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक घट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिस आप देखाए नानक ते सुजन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट ब्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बै संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरित मह देख ससियर सूर नखियत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोला पडोल न कबहू डोला सर्व

मिलाए कमन निकट कमन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जाने आप बुझाए सर्ब भूत आप वरतारा सर्ब नैन आप पेखनहारा सगल समगरी जा का तना अपन जस आप ही सुना आवन ज्ञान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कै मद लिपतो रहा जो किछ कहना सो आपे कहा।

रंग जय जय शब्द नाहद बाजा सुन सुनंद करे प्रभ गाजा प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न पए गुरुदेवा पूर्ण होई सेवक की सेवाल जंजाल बेकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहरी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकागर चीता सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सोहत निदान सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न होवै अमन जान हर तन खाट चलै जन सोए नानक दिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए

Pono hoga. Pasare vapoyan trang lakhina jahi parbram ka rang jasi mat de tasa pargasu parbram karta binas. Sadav sadav sada dayalu simar simar nanak pai nihalu slok. रचना प्रवृत्ति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होई पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रभा है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट पिस्तर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नव तन नाम त्यावह नन करते कांत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट भेग आत्म कोर कई कोट पर द्रव कोहर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट प्रदेश ब्रह्माहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पावन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशि अर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपना सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र कई कोट किए रत्न समुद कई कोट नाना प्रकाश जमते कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किनर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शुकर मृगाच सब ते निराय सब ते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरह कई कोट बहजोनी फरह कई कोट बैठती खाहे कई कोट घल थक पाहे कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह भाणा तह तह रख जह जह भाणा तह तह रखे नानक सब कुछ प्रभु कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलियो प्रभु अविनास कई कोट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरी उपासार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट कीने बहुपात प्राप्ते होए ब्रह्म समातु ताकांत न जाने कोई आपे आप नान प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह समावै अपने जन को सास सास समारे नानक ओ परमेश्वर के प्यारे सरो को करण कारण प्रभु कै दूसरा नाही कोई नानक तिस बलिहार नै जल थल मही अर सोए अष्टपदी

जब लग मोह समग्न संगमाई तब लग धर्म राय देश जाई प्रभु कृपा ते बंधन टूटाई गुरु प्रसाद नानक हो छूटा सहस कटे लख उठता वै तृप्त न आवै माया पाछ पावै अन भोग दिखिया किह करै नह तृप्तावै खप खमरा बिना संतोख नही को राजा सुपन मनोरथ बृथे सब काजै नाम रंग सर्व को बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करामण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करामण करण हार उसका हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप अपर सोए जो किनो सो अपने रंग सब ते दूर सब क्या संग पूजा देखा कर आपे ही के आपे अनेक